معصومی چرچے پہ پھر گناہگار ہے مجرموں کے عمل ہے

0: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

अमरीका जो रेडार ऐं ईरान जो रेडार ऐं ड्रोन ज़खीरो करणु हंधि ते फिज़ाई हमिलो। अमरीकी फ़ौज चवण आहे त कमर्शियल जहाज़ ते हमले जे जवाब में ईरान ते फिज़ाई हमिलो कयो वियो। ईरान गुज़िरियल ॾींहुं अब्न होर्मुज़ में गुज़रंदड़ अमरीका जे कमर्शियल जहाज़ खे निशानो बणायो हो। ईरानी ड्रोन स्टोरेज ऐं सामूंडी रेडार हंधनि खे निशानो बणायो वियो। अमरीकी नायब सदर जे डेविन चयो आहे तशद जो जवाब तशद सां ॾिनो वेंदो। ईरान खे मफ़ामती यादाश्त नामे ते अमल दरामद जे ख़िलाफ़ आहिनि त सिधो राब्तो करे सघे थो। पासदान इनकलाब पारां अमरीका हमिलो नाकाम बणाइण जी दावा। पासदान इनकलाब जो चवण आहे त अमरीका जो सख़्त जज़्बी ते कयल हमिलो नाकाम बणाए छॾियो आहे। जवाब में अमरीकी फ़ौज ठिकाननि खे निशानो बणायो वियो आहे। अमरीकी ॿीहर हमिलो कयो वियो त हुन खां वधीक सख़्त जवाब ॾिनो वेंदो।

कुझु कलाक अॻु ईरान मथां जंगबंदी मुआहिदे जे भञकड़ी जो इल्ज़ाम लॻाईंदे सख़्त जुमिलनि जी हमलनि जी धमकी ॾिनी हुई। डोनाल्ड ट्रम्प चयो त ईरान अपने हुर्मस मां गुज़रंदड़ जहाज़नि ते चयन ड्रोन ज़रिए हमला कया। हिकु ड्रोन हिकु सामूंडी जहाज़ जे मथे हिसे सां टकराइजी वियो। टे ड्रोन किराए तबाह कया विया। अहिड़ो अमल जंगबंदी मुआहिदे जी भञकड़ी ऐं बेवकूफ़ी आहे। असां वटि दुनिया जी ताक़तवर फ़ौज आहे। असां ईरानी क़यादत ख़तम करे छॾी। जनरल सुलेमानी खे बि मारे छॾियो। ईरान जो फिज़ाई ऐं सामूरी दिफ़ा बि ख़तम करे छॾियो आहे। बीटू जहाज़नि ईरान जे एटमी दर्ज बि ख़तम करे छॾी। ईरान खे कंहिं सूरत में एटमी हथियार ठाहिण न ॾींदासीं। लबनान, इसराइल ऐं अमरीका अमन मुआहिदे जी फ्रेमवर्क ते सहियूं करे छॾियूं। अमरीकी परडेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त त्रिधुरी अमन मुआहिदे जे फ्रेमवर्क जे बुनियाद ते अॻिते वधाईंदासीं। हिन फ्रेमवर्क जा मस्बत नतीजा निकरंदा। लबनान अमन मुआहिदे लाइ असांखे अञा बि घणो कुझु करणो आहे। फ्रेमवर्क मुआहिदो लबनान जी ख़ुदमुख़्तियारी खे वाज़े करे थो। मुआहिदो हिज़बुल्लाह खे हथियारनि खां पाक करण ऐं हुन जे बुनियादी ढांचे खे ख़तम करण लाइ तरीक़ेकार फराहम कंदो। मुआहिदे तहत इसराइल पंहिंजे शहरनि खे पेशींदड़ ख़तरनि जे ख़ात्मे बाद पंहिंजे सरहदनि ते वापसि वञी सघंदो।

पाकिस्तान ऐं ईरान जे परडे॒ही वज़ीरनि जो टेलीफोन ते राब्तो। ईरानी मीडिया जो चवण हो त अब्बास चिराग़ची ऐं इसहाक़ डार ॿ तिनफ़ा लाॻापनि इलाक़े जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल कई।

ईरान जे पहिरीं नाकाबंदी दौरान अमरीकी फ़ौज पारां तेवील में वरितल 22 ईरानी मुहाणा पाकिस्तान पहुची विया। नायब वज़ीर आज़म इसाक़दार तसदीक कंदे चयो आहे त 22 ईरानी मुहाणा कराची पहुतल आहिनि। संदनि ॾे वापसी लाइ ईरानी अख़्तियारनि सां राब्ते में आहियूं। मुहाणनि जी बाहिफ़ाज़त वापसी लाइ अमरीका ईरान सां लाॻीतो राब्ते में हुआसीं। हीउ अमरीकी तेवील मां वापसि करायल ईरानी मुहाणनि जो चोथों ग्रुप आहे।

अमरीका ईरान जंग खां पोइ यूएई ईरान जो पहिरियों भेरो आला सतह बाज़ाबता राब्तो ॿिन्ही मुल्कनि विच में ॿेड़ी सर्विस में बहाल थी वई। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास अराग़ची यूएई जो हमन सभु विच में राब्ते दौरान खिते में थींदड़ तब्दीलियुनि ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद ईरान अमरीका मुआहिदे ते मुकमल अमल दरामद ते ज़ोर भरियो।

ऐं हुकूमत आलमी मार्केट में थी लॻनि मिलाद जो फ़ाइदो आवाम खे न ॾिनो। पेट्रोल ऐं डीज़ल जा साॻिया अघ बरक़रार। पेट्रोलियम डिवीज़न नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। पेट्रोल जो फी लीटर अघु 299 रुपया 50 पैसा ऐं डीज़ल जो फी लीटर अघु 311 रुपया 47 पैसा बरक़रार रहंदो। गासलेट फी लीटर 6 रुपया 85 पैसा सस्तो।

0: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद।
1: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में ये जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का
0: पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: आप सुन रहे हैं
4: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

जो मिजू बनाए हूँ भाषा मतरिया बने हूँ भाषा नचा नचा दिल धार काते समा पंच मजार ऐसी वैसी में तू बात कर मुझे सेना को ही मुलाकात कर तू अठगा तू अठगा तू अठ डर डर।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स एंड जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी एंड चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: थिया ऑपरेशन अठ दहशतगर्द मारिजी विया आईएसपीआर मूजिब खारान ऐं मस्तूंग में पंज हंधि ऑपरेशन कयो वियो खारान में ऑपरेशन दौरान टे दहशतगर्द ऐं मस्तूंग में पंज भारतीय हामी दहशतगर्द मारिजी विया मारिजी वियल दहशतगर्द शहरनि ऐं कानून लाकुनि इदारनि ते हमलनि में मुलिस हुआ अमरीका जो ईरान जी रेडार ऐं ड्रोन ज़खीरो करण हंधनि ते फिज़ाई हमिलो अमरीकी फ़ौज जो चवण आहे त कमर्शियल जहाज़ जे हमले जे जवाब में ईरान ते फज़ाई हमिलो कयो वियो ईरानी ड्रोन स्टोरेज ऐं सामूंडी रेडार्स खे निशानो बणायो वियो अमरीकी नायब सदर जे डेविन्स चयो आहे त जवाब तशद सां ॾिनो वेंदो ईरान खे मफ़ामती यादाश नामे ते अमल दरामद ते इख़्तिलाफ़ आहिनि त सिधो राब्तो करे सघे थो ईरान गुज़िरियल ॾींहुं आमने हुरमज़ मां गुज़रंदड़ अमरीका जे कमर्शियल जहाज़ खे निशानो बणायो हो पासरान इनकलाब पारां अमरीकी हमिलो नाकाम बणण जी दावा पासरान इनकलाब चयो त अमरीका जो सुरक्षजी ते कयल हमिलो नाकाम बणायो वियो आहे जवाब में अमरीकी फ़ौज ठिकाणनि खे निशानो बणायो अमरीका ॿीहर हमिलो कयो त वधीक सख़्त जवाब ॾिनो वेंदो लबनान इसराइल ऐं अमरीका अमन मुआदे जी फ्रेमवर्क ते सयूं करे छॾियूं अमरीकी परडे वज़ीर मार्को रोबियो चयो आहे त टधुरी अमन मुआदे जे फ्रेमवर्क जी बुनियाद ते अॻिते वधाईंदासीं हिन फ्रेमवर्क जा मस्बत नतीजा निकरंदा लबनान अमन मुआदे लाइ असांखे अञा घणो कुझु करणो आहे फ्रेमवर्क मुआदो लबनान जी ख़ुदमुख़्तियारी खे वाज़े करे थो मुआदो हिज़बुल्लाह खे हथियारनि खां पाक करण ऐं बुनियादी ढांचे खे ख़तम करण लाइ तरीक़ेकार फराहम कंदो मुरीद शाख में मुड़ुस गलो कपे ज़ाल खे क़तल करे छॾियो जवाबदार मुड़ुस शौकत पंहिंजे घरवारी आयशा जो गलो कपे फरार थी वियो सन वेझो इंडस हाईवे ते नामालूम शख़्स जो लाश आहे इतलात पुलिस लाश अस्पताल मुंतकिल कयो सुञाणप न थी सघी आयछोल में शाहूआ जे पुछड़ी में पाणी न पहुचण ख़िलाफ़ आबादकारनि जो एहतजाज आबादकारनि जो सांगड़ हैदराबाद रोड ते धरणो पुछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो
1: सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: मेरा फैन।
1: White H Beauty Cream 5 Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान पंहिंजे सरज़मीन तां हर क़ीमत ते दहशतगर्दी खे ख़तम कंदो। असांजो पाड़ेसरी शिकस्त बाद प्रॉक्सीस जो सहारो वठी रहियो आहे। पाक फ़ौज दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे। कराची में पाक बेरिया जे पासिंग आउट ट्रेड खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो त पाकिस्तान जी कोशिशुनि सां अमरीका ऐं ईरान में इस्लामाबाद मफ़ामत ते सयूं थियूं। खिते में अमन जे क़याम लाइ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जूं कोशिशूं बि सहारा जोगियूं हुयूं। ईरानी सदर मसूद पख़्शान पारां पाकिस्तान जो दौरो इस्लामाबाद जे अहम किरदार जो एतराफ़ हो। खिते में थींदड़ वॾनि तब्दीलियुनि जो असर बि जल्द ज़ाहिर थींदा। पाकिस्तान दुनिया में अमन जो अलम बरदार तौर उभरियो आहे। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ॿिनि हंधनि ते ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिब खारान ऐं मस्तूंग में 25 ऐं 26 जून ते ऑपरेशन कयो वियो। खारान में ऑपरेशन दौरान 3 दहशतगर्द ऐं मस्तूंग में 5 भारतीय हामी दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजियल दहशतगर्द शहरनि ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि ते हमलनि में मुलविस हुआ। अमरीका ईरान जो हिकु ॿिए जे दिफ़ाई मांगनि खे निशानो बणाइण जी दावा। अमरीकी सेंटकॉम मूजिब ईरान जे ड्रोन ऐं मिज़ाइल स्टोरेज साहली रेडार्स खे निशानो बणायो वियो आहे। अमरीकी कार्रवाई ईरानी ड्रोन हमले जो ताक़तवर जवाब हो। ईरानी पासदारान इनकलाब जी अमरीकी हमला नाकाम बणाइण जी दावा। पासदारान इनकलाब चयो आहे त ईरानी बहरिया ऐं फिज़ाई शहर ते अमरीकी हमले खे नाकाम बणायो आहे। जवाब में ईरानी फ़ौज खिते में मौजूद अमरीकी एरनि खे निशानो बणायो आहे।

अमरीकी नायब सदर जी डिवेंस चयो आहे त तशद जो जवाब तशद ज़रिए ॾियण जी धमकी जे डिवेंस चयो त जंगबंदी मुआदे ते ईरान खे सयूं करण बाद इज़त ॾिनी आहे। ईरान खे मफ़ामती मुआदे ते ख़िलाफ़ आहिनि त सिधी रीति ॿुधाए सघनि था। तशद जो मुक़ाबलो तशद ज़रिए कयो वेंदो।

सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां चइनि ॼणनि जा लाश हथ हिक सुञाणप न थी। दादू में खुदाबाद लग मरियुनि जे घोट मां नौजवान जो घर आॾो गोड़ी लॻल लाश हथ। नौजवान जी सुञाणप पीर बख़्श वल अमीर बख़्श मरी तौर थी। थुल मां गुम ॼणियल नौजवान बिठल बुरलो जो बि वाह मां लाश मिलियो। नौजवान गुज़िरियल ॾींहुं घरां निकिरण बाद गुम थी वियो हो। रतो दरो जे पीटीसी आयल आफिस भरसम होटल ते पोरियो कंदो नौजवान जो लाश हथायो। पुलिस मूजिबि फोतीअ जी सुञाणप बशीर वल्द अरबाब भुट्टो तौर थी आहे। बाईपास भरसा होटल ते कम कंदो हो। सन भरसा वंडे सावे त नामालूम शख्स जो लाश कपड़नि खां आजो मिलियो। पुलिस पहुची लाश खे पंहिंजे टेबिल में वठी माजन ताल खे अस्पताल मुंतकिल कयो।

0: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے۔
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान पंहिंजे सरज़मीन तां हर क़ीमत ते दहशतगर्दी खे ख़तम कंदो। असांजो पाड़ेसरी शिकस्त बाद प्रॉक्सीज जो सहारो वठी रहियो आहे। पाक फ़ौज दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे। कराची में पाक पहिरियों जो पासिंग आउट पेड खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तान जी कोशिशुनि सां अमरीका ऐं ईरान में इस्लामाबाद मफ़ाम ते सहियूं थियूं। खिते में अमन जे क़याम लाइ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जूं कोशिशूं बि साराह जोगियूं हुयूं। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान पारां पाकिस्तान जो दौरो इस्लामाबाद जे अहम किरदार जो एतराफ़ हो। खिते में थींदड़ वॾियुनि तब्दीलियुनि जो असर बि जल्द ज़ाहिर थींदा। पाकिस्तान दुनिया में अमन जो अलमबरदार तौरु उभरियो आहे। अमरीका ऐं ईरान जी इक्विटी जे दिफ़ाई मांगनि खे निशानो बणाइण जी दा ईरान मिज़ाइल स्टोरेज साहली रेडार्स खे निशानो बणायो वियो। अमरीकी कार्रवाई ईरानी ड्रोन हमले जो ताक़तवर जवाब हो। ईरानी अपाज़ा इनकलाब जी अमरीकी हमला नाकाम बणाइण जी दावा पासरा इनकलाब चयो आहे त हिकु शहर ते अमरीका काम बणायो आहे। जवाब में ईरानी फ़ौजी खिते में मौजूद अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो आहे। अमरीकी नायब सदर जेडी विंस पारां तशद जो जवाब तशद ज़रिए ॾियण जी धमकी ॾेई छॾी। जेकम जंग बंदी मुआदे ते ईरान खे सयूं करण बाद इज़त ॾिनी आहे। ईरान खे मफ़ामती मुआदे जे ख़िलाफ़ तव्हां सिधी रीत ॿुधाए सघनि था। तशद जो मुक़ाबलो तशद ज़रिए ई करियो वेंदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची सां कोन तिराबतो। अब्बास इराक़ची पारां मुहाणनि जी वापसी ते पाकिस्तान जी पखण ॿिन्ही परॾेही वज़ीरनि पारां अमन खे हथी ॾियण वारे अज़म जो वरचाओ। परॾेही ऑफिस मौजूब इसहाक़ डार परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची खे चयो त खिते में पाएदार अमन लाइ इस्लामाबाद अमन अमल खे वधाइण में तामीरी किरदार अदा कंदो रहंदो। अब्बास इराक़ची अमन कोशिशुनि ऐं पाकिस्तान जी सहकार जा थोरा मञा। लबनान इसराइल ऐं अमरीका अमन मुआदे जे फ्रेमवर्क खे सयूं करे छॾियूं। अमरीकी परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त अटे दुरी अमन मुआदे जे फ्रेमवर्क जे बुनियाद ते अॻिते वधाईंदासीं। फ्रेमवर्क जा मस्बत नतीजा निकरंदा। लबनान अमन मुआदे लाइ असांखे अञा घणो कुझु करणो आहे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ॿिनि हंधनि ते ऑपरेशन अठ दहशतगर्द मारिजी विया। एसपीआर मूजिबि खारान ऐं मस्तूंग में 25 ऐं 26 जून ते ऑपरेशन कयो वियो। खारान में ऑपरेशन दौरान 3 दहशतगर्द ऐं मस्तूंग में 5 भारतीय हामी दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियल दहशतगर्द शहरनि ऐं कानून लाकुनि जे इदारनि ते हमलनि में मुलस हुआ। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां 5 ॼणनि जा लाश हथ ॿिनि जी सुञाणप न थी। दादू वेझो मेरन जे ॻोठ मां नौजवान जो घर आॾो गोली लॻल लाश मिलियो। नौजवान जी सुञाणप पीरबख़्श वल्द अमीरबख़्श मरी तौर थी। थुल मां गुम ॼणायल नौजवान मिठल बुड़ो जो बवाह मां लाश मिलियो। नौजवान गुज़िरियल ॾींहुं घरां निकिरण बाद गुम थी वियो हो। रतो देरो भरिसां होटल ते पोरियो कंदड़ नौजवान जो लाश हथ पुलिस पहुचो पहुती पोयो त बशीर भुट्टो होटल ते कमु कंदो। सन भरिसां बंडस हावे तां नामालूम शख़्स जो कपड़नि खां आजो लाश हथ आयो। सुञाणप न थी। नसो फिरोज़पुर सां बि क़ौमी शाहरा तां पीरसन जो लाश हथ सुञाणप न थी। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शाखनि ऐं भवन में पाणी जी शदीद खोट बरक़रार। आबादगार सराप एहतजाज। जमाल शाह जमी रुकण शाख जे आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ कोडरूं खणी एहतजाज। खोरवा जे चोरवा शाख जे आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। झोल जे शाहूआ जे पुतली जे आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ सांगल रोड ते धरणो। अठहठ मोरी भरिसां जाम लगारी शाख जे पुतली में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। सन ऐं मांझर में बि पाणी खोट ख़तम न थी। आबादगारनि जो एहतजाज। घरेलू भरिसां जवाबदार मुड़ुसु डंडा हणी ज़ाल खे क़तल करे छॾियो। रशीद वगण थाणे जेल में सजाद कासकली ज़ाल शुमाइला खे डंडा हणी क़तल कयो। पुलिस जो चवणु आहे त मक़तूल औरत ॿिनि ॿारनि जी माउ हुई। वाक़िए जो कारण मालूम न थियो आहे। वधीक जांच करियूं पिया। बुलड़ी शाहकरी में क़तल थियल पीपी अगवाण संदसि घरवारी जी जनाज़े नमाज़ बाद तस्वीन। पीपी अगवाण ग़ुलाम नबी मक्सी ऐं संदसि घरवारी समरीन खे गुज़िरियल राति हथियारबंदन कार ते फायरिंग करे क़तल कयो हो। फायरिंग में ज़ख़्मी थियल 5 वरनि जे नींगर सैफुला जो इलाज जारी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM ETH नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: छावां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो

0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: बेटा निखरा निखरा चेहरा व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले, चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, शामिल प्रोग्राम होते जा रहे हैं और अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद है, आप हमारे शो सुन रहे हैं और आप शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो आप लोगों को टॉपिक यानी कि पता होना चाहिए कि आज के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से सवाल क्या पूछा है, तो उसके ऊपर अगर आप बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा साबित होगा। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो आप हमें 888-1 पर ज्वाइन करेंगे, फेसबुक पर ज्वाइन करेंगे और उसी के साथ साथ टॉपिक को फॉलो करेंगे। और टॉपिक मैंने आप लोगों से पूछा है कि आप मुझे बता रहे हैं कि अहले बैत से मोहब्बत क्यों जरूरी है। आज के प्रोग्राम का सवाल बिल्कुल यही है कि आप मुझे बताएं कि अहले बैत से मोहब्बत क्यों जरूरी है। और इसी के साथ साथ आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, लेकिन आपका सवाल बिल्कुल यही है कि आप मुझे बताएं कि अहले बैत से मोहब्बत क्यों जरूरी है। और

आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी स्किन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी स्किन को हमेशा चमकदार बनाना चाहते हैं, तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आपकी जिल्द को फ्रेश और गोरा बनाती है, हर किस्म के नुकसान से बिल्कुल आप लोगों के चेहरे को पाक रखती है, झुर्रियों और दाग धब्बों को खत्म करती है, आपके चेहरे को निखारने का बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो को एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क से तैयार की गई है, आपके ऑल स्किन टाइप के लिए मर्द हजरात और खवातीन कोई इस्तेमाल कर सकता है। उसके अलावा सबसे अच्छी बात है कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स है ना, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम की बात ना करें तो मजीद जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल अज़ा से तैयार किए गए हैं, यानी कि आप लोगों की खूबसूरती सिर्फ बढ़ती रहेगी। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट साबित होंगे। जब आप इस्तेमाल करेंगे व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, तो आप लोगों को 3 रातों के बाद जो इनका अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप भी इस्तेमाल करके देखिए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, और साथ में अगर आप कोई अच्छा सा साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आप फेस वॉश लगाना चाहते हैं, तो आप व्हाइट एज ब्यूटी सोप का ट्राई कर सकते हैं। व्हाइट एज ब्यूटी सोप आपके लिए अवेलेबल है। बिल्कुल जी, व्हाइट एज ब्यूटी सोप भी आपके लिए है, व्हाइट एज फेस वॉश भी है। अब आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि आप या फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे या फिर साबुन इस्तेमाल करेंगे। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब की, तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब उन लोगों के लिए है। बिल्कुल जी, जो लोग अपने चेहरे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिनके चेहरे पर एक्ने काफी ज्यादा आ चुके हैं, दाने आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, तो आपके लिए व्हाइट एज का डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब मौजूद है। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब ना सिर्फ आपके चेहरे के एक्नेस का खात्मा करेगा, बल्कि आपके चेहरे को जो है ना वो हमेशा ग्लोइंग बनाए रखेगा। आपके चेहरे पर एक्ने मार्क्स हो, पिंपल किसी भी साइज का हो, ब्लैक पॉट्स हो, व्हाइट हेड्स हो, या फिर आपके चेहरे पर जो एक्स्ट्रा ऑयल आ जाता है, इन तमाम से चीजों को खत्म करता है। ये जनाब आयुर्वेदिक फार्मूले से तैयार किया गया है। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जो कि आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप के लिए लड़के लड़कियां सभी लगा रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें व्हाइट एज लवली क्रीम की, तो व्हाइट एज लवली क्रीम की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि व्हाइट एज लवली क्रीम एक फेयरनेस फार्मूला है। फेयरनेस फार्मूला भाई आप लोगों के लिए स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हर किसी को ये जो प्रोडक्ट है ना, ये इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। इसके अंदर हर तरह से जो है ना आप लोगों के लिए जो है ना वो बेहतरीन तरीके से तैयार करने की कोशिश की गई है, जिसके अंदर 30 विटामिन के कैप्सूल ऐड किए गए हैं, जो कि ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाने का काम करेंगे, बल्कि आपके चेहरे को हमेशा प्रोटेक्ट भी रखेंगे। और उसके अलावा इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है, और सनस्क्रीन ऐड करने का जो फायदा है ना, वो ये है कि भाई आप लोगों की स्किन जो है वो धूप से बची रहे। अगर आप इस्तेमाल करें व्हाइट एज लवली क्रीम, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट में कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। तो जल्दी जाइए, परचेज कीजिए, और साथ में डायल करते जाइए 03 15 799 0595।

ओके जनाब, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आप इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोई सा भी प्रोडक्ट तो आप हमें बताइए, ताकि हमें पता चले कि हमारे जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है वो इस्तेमाल कर रहे हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स, वो तो आप बताएंगे ना। तो जल्दी से बताइए और इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम कैसे बनते जाइए। और यहाँ पर आपके मैसेजेस हैं जिनकी जानिब हम आते हैं, कॉमेंट्स अगर आप हमें कर रहे हैं फेसबुक वाली साइट पर, तो आप जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर भी करते जाइए।

आपके प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स. एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं और खूबसूरतियां हासिल करते जा रहे हैं, चाहे आप मर्द हजरात हो चाहे आप खवातीन हो. इसी के साथ साथ डायल करते जा रहे हैं 03157990595 और डायल करने के बाद नंबर के ऊपर जो है ना आप उन्हें बताइए कि आप कौन से एरिया से हैं, कहां पर अवेलेबल अभी तक प्रोडक्ट्स नहीं हुए हैं, ताकि अवेलेबल हो जाए और आप लोगों को लेने में आसानी हो. ठीक है. ओके सो नजीर खोसू भाई हमें सुन रहे हैं, कहते हैं कुछ ऐसे कुएं जरूर खोदें जिनका पानी आपने नहीं पीना और कुछ दरख्त ऐसे लगाएं जिनकी छाओं में आपने नहीं बैठना. उसका मतलब लोगों के लिए आसानियां पैदा करें कि वो आपके मरने के बाद भी आपके लिए सदका जारिया बनी रहे. बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात आपने हमारे साथ शेयर कर दी है. थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं. और फहीम शेख हमारे साथ मौजूद है, मोलेट सलामत आपको वेलकम कहा जाता है. रेहाना खान हमारे साथ मौजूद है, बखर से आप हमारे साथ हैं. और वरियाम अली जतोई हमारे साथ हैं, कहते हैं सिद्रा शो में दिल से आपको वेलकम करते हैं, हम भी आपको वेलकम करते हैं. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं. और फहीम कहते हैं कसीदा सुनाएं. जी बिल्कुल, आपका कसीदा हम लगाते हैं. और अब्दुल रजा कहते हैं मोहम्मद खान कुंभर, मोहम्मद अली कुंभर, हली पोटो स्टार ज्वेलरी से आप हमारे साथ मौजूद हैं. बहुत शुक्रिया जी, आपको खुश आमदीद कहा जाता है. और चाचा खाले चूड़ी जो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, मोहब्बत तो पूरी इंसानियत से जरूरी है पर वो तो अहले बैत हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना. ये टॉपिक आंसर. ओके जी, बहुत बेहतरीन. और कैसर खान हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम. मीरपुर खास आप हमारे शो सुन रही हैं, खुश आमदीद. बताएं जरा मीरपुर खास में अवेलेबल हो चुके हैं प्रोडक्ट.

केजी अब्दुल खालिक अबोल के थी भाजी असा वट क्रीम न पो मिले हाने ठाक जी भा तवा किथा असा के बुधो पया यो बुधाए जो इन का अलावा ही जेको हाने मा ता के नंबर बुधाइदा ने नंबर ती तवा एक दफो राबतो जरूर कजो जी तवा जे सिटी में तवा जे गोठ में तवा जे एरिया में ही प्रोडक्ट अवेलेबल थी वनन ए प्रोडक्ट आहिन वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स ए नंबर तवा डायल कना 03-15-799-0595 नंबर आहे जेंते तमा राबतो करे पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सको था आराम सा।

ओके सर, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. यहाँ पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, अपनी खूबसूरती को बढ़ाते जा रहे हैं और मजीद खूबसूरत होना चाह रहे हैं, तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल लाजमी किया करें. और साथ साथ जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद हैं, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए. और बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं. फहद लाशारी हमारे साथ हैं. फहद भाई लिखते हैं, टॉपिक अहले बैत से मोहब्बत इसलिए जरूरी है, अहले बैत के नाना का दीन बचाया उन्होंने और करबला का वाकया दुनिया और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए बेमिसाल है. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता. और पोइट्री लिखते हैं कि करबला की खाक पर सजदों की वो मेराज है, नामे हुसैन अलैहिस्सलाम आज भी हक की बड़ी आवाज है. ओके जी, ओके, बेहतरीन. आपको खुशामदीद कहा जाता है फहद भाई जान. और इरम हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम. कहती मेरी प्यारी दिलबर दोस्त, आप ही मिस यू. और आपने मुझे मिस किया या नहीं? बिल्कुल जी, आपको मिस किया था. बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ. इमरान अली बिरोही भाई लिखते हैं.

0: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पारा तशद जो जवाब तशद जरिए देने की धमकी, जेटिवियंस चया है त जंगबंदी मुआहदे ते ईरान के सहयोग करण बाद इज्जत दिनी है, ईरान के मफामती मुआहदे ते खिलाफ आन, तो सीधी बुधा सकन था तशद जो मुकाबलो तशद जरिए ही कयो वेंदो।

0: ईरान अमरीकी मिज़ाइल हमलन के मुआहदे की भंजकड़ी करार दई छो। ईरानी वरदई वजारत है तो अमरीकी मिज़ाइल हमला मफामती यादाश्त के संगीन भंजकड़ी आन। ईरानी फौज अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीका से लागपल हदफन के निशानो बनाया। विचोभर ज मुल्क अमरीका खिलाफ इन सरजमीन इस्तेमाल थे न दिन। नायब वजीर आजम इसहाक डार जो ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकी से फोन से राबतो। अब्बास इराकी पारा मुहान की वापसी से पाकिस्तान की वाखाण। बिन्हीं परदेही वजीर पारा अमुन के अथी डेण वाले आजम जो वजाओ। परदेही ऑफिस मूजिब इसहाक डार परदेही वजीर अब्बास इराकी को खिते में पायदार अमुन लाय इस्लामाबाद अमुन अमल के वधायण में तामीरी किरदार अदा कंदो रहंदो। अब्बास इराकी अमुन कोशिश ने पाकिस्तान के सहकार जा थोरा मनिया। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जो बिन हंधन ऑपरेशन अठ दहशतगर्द मारजी पाया। आईएसपीआर मूजिब खारान ए मसूम में 25-26 जून से ऑपरेशन किया वो। खारान में ऑपरेशन दौरान 6 दहशतगर्द ए मसूम में 5 भारतीय हामी दहशतगर्द मारजी पाया। मारजी पियल दहशतगर्द शहर के हमले में मुलवस हुआ। सिंध के मुख्तलिफ शहर में 5 जणन जा लाश हथ बिन सुणप न थी। दादू वेझो मरीन के गोठ में नौजवान जो खराडो गोली लगल लाश मिलो। नौजवान सुणप पीरबख्श वालिद अमीरबख्श मरी तौर थी। ठुल में गुम जड़ल नौजवान मिठल बडो जो बवा में लाश मिलो। नौजवान गुजल दिन घर निकरण बाद गुम थी पो हो। रतो देरो भरसा होटल से पोरियो कदड़ नौजवान जो लाश हथ। पुलिस मूजिब फोती पोरत बशीर भुट्टो होटल से कम कंदो। सन भरसा बिंड साहबे ता नामालूम शख्स जो कपड़न का आजो लाश हथ। सुणप न थी। 900 भरसा कौमी शाहरा तम पीरसन जो लाश सुणप न थी।
1: मुसलसल 2 महीना थियन त उन्हनि जी पुछड़नि ताईं पाणी पीअण जे लाइ नाहे। पखी पकड़ माण्हू उन मरंदा। असांजे ॿिन महीननि खां वठी पाणी नाहे मिलियो।
0: सिंध के मुख्तलिफ शाखन ए वाहन में पानी शदीद खोड़ बरकरार। आबादगार सरापा एहतजाज। जमाल शाह के मीर रुकन शाह के आबादगार जो पानी खोड़ खिलाफ कोटरू खी एहतजाज। खोरवा के चोरवा शाह के आबादगार जो पानी खोड़ खिलाफ मुजाहरो। झोल के शाहूद के पुछड़ी के आबादगार जो पानी खोड़ खिलाफ सांगल रोड से धरणो। 8-8 मोरी भरसा जाम लगारी शाह के पुछड़ी में पानी के खोड़ खिलाफ आबादगार जो एहतजाज। सन ए मांझन में भी पानी खोड़ खत्म न थी। आबादगार ने एहतजाज किया। कराची की अदालत बीआरटी करप्शन केस की बुधनी जवाबदार जमीर अब्बासी वे 4 दिन के जिस्मानी रिमांड से एंटी करप्शन हवाले। बुधनी दौरान अदालत जांच ऑफिसर का सवाल किया जवाबदार जो बयान के रिकॉर्ड जो हिस्सों बनाया वो है या न। जांच ऑफिसर बुधा जवाबदार जमीर अब्बासी के बयान के रिकॉर्ड जो हिस्सों बनाया वो है। बुधनी दौरान जवाबदार जमीर अब्बासी अदालत के बुधा तो खबर न छो सनस फैमिली जो बैंक अकाउंट्स ए बया तफसील छो तलब क्या पाया वन। मनसूबे जो कंसल्टेंट भी एक वफाकी वजीर जो वेझो मानू है। छा रोक रकम खड़ी भजी पाया। अदालत केस की बुधनी 1 जून तई मुलतवी कर।

0: तोखे छा खपे छा खपे वारड़ी तोखे छा खपे ओ चरी नाओ चंड थई
1: इट्स 2:15 पीएम
2: दिस टाइम चेक इज डी स्किन
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और
4: ताडो सुठो
3: जीए एफएम 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज जीएफएम 90.4

ओवरी से वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। मौजूद ही हमारे साथ यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं इस्तेमाल कर रहे हैं और खूबसूरतियां हासिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आप सही जगह पर मौजूद है। यहाँ पर आप लोगों को ना सिर्फ खूबसूरत होने के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है बल्कि खूबसूरती भी वो वाली आपको मिलेगी जो हमेशा आपके चेहरे पर बरकरार रहने वाली है। तो लाजमी आप जो हैं जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं आप ये तमाम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके देखिएगा और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइएगा। इससे ये फायदा होगा कि भाई आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई सिद्रा जो बता रही है वो वाकई सही है। और साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया, अभी जो बारी है वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने की है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए है और खास करके उन लोगों के लिए तैयार की गई है डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिनकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है और काफी ज्यादा सेंसिटिव स्किन होने की वजह से वो कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले जो ना वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि हमने इस्तेमाल करना है या फिर नहीं इस्तेमाल करना। तो बिल्कुल जी अगर हम यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जिक्र कर रहे हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ना सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि आपकी खूबसूरती के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी साबित है। और सबसे बड़ी बात की ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार शुदा हुआ प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो है ना वो तमाम चीजें ऐड की गई है जो कि आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाती रहेंगी। और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप परचेज करते हैं तो आप लोग ये भी चीज देखते हैं कि हिन जे मथा जो फोटो आ ना माई जो वो भी डॉक्टर माई जो अथव तो डॉक्टर्स खां फुल जो ना पुछा करे फुल तहकीक करे कोई ही प्रोडक्ट तैयार कर जो नालो है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो माइक्रोबीट फार्मुलेशन से तैयार थियल है वाइटामिन ई बीट्स इन अंदर मौजूद है तवी स्किन के निखारी गोरो बनाई तवे चेहरे जहाँ जी डार्क सर्कल उ खत्म करी तवी स्किन जो है ना अगर मुरझायल रही है तवा वक्त का पे कुराड़ा थी वह तो ये सब चीजों खत्म थी तवी स्किन ग्लो करण शुरू कर तवी स्किन से निखार अचन शुरू थी वो जैसे तुम इस्तेमाल कर डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ओके जी सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तवा के डी स्किन फेस वॉश भी मिली रो है डी स्किन फेस वॉश जो इजीली तुम इस्तेमाल कर सो ऑल स्किन टाइप जी लाया है डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी ऑल स्किन टाइप जी लाया है। सो डी स्किन फेस वॉश जो हाइलोरोनिक एसिड थे उनको मकसद ये हों अगर तवी स्किन डिहाइड्रेट थी वही है तवी स्किन सफाई रुखी सुखी लगनी है तो तवी स्किन के हाइड्रेट कौन तवी स्किन के ग्लो डी तवी स्किन सफाई वीआईपी बनाए छी। तो अगर तुम मर्द हजार आयो खीन आयो जी भी मानो असा के बुधन पाया टीनेजर्स आयो खास करे तो सब को इस्तेमाल करे सके तो छो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुए या डी स्किन फेस वॉश हुए ये तवी स्किन के मुताबिक तैयार कयो वयो आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवा इस्तेमाल कंदा नाइट क्रीम आए राजे टाइम इस्तेमाल कयो अगर तवा डी स्किन फेस वॉश इस्तेमाल करण चाहियो था तो उन जो बाकायदा तवा इस्तेमाल करे सको था डी में टे चार दफा तवा इजीली इस्तेमाल करे सको था डी में टे चार दफा तवा लगायो उन खा पोई जको ने तवा के असल रिजल्ट जदे मिली वेंदो कोई तवा पाण ही चवंदा तवा छा गाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन फेस वॉश जी तो ये उही प्रोडक्ट आए जिनके बारे में न मतलब बुधाई जैसे तुम इस्तेमाल करना तो खबर पड़ी वेंदी तो वाकई ही प्रोडक्ट जी आए वो केतरा जबरदस्त आए इन प्रोडक्ट के इस्तेमाल से तवे केतरो सुठो रिजल्ट मिली सके तो तुम लाजमी ट्राई कर दिसो तुम इस्तेमाल कंदा राजे टाइम से तुम इस्तेमाल करने का पैरिया फेस वॉश लाजमी कंदा कर अक्सर जो मानू हूं ना जे फेस वॉश न कंदा ई बस क्रीम लगे छींदा तो इो सफा न कंदा कर सब का पे फेस वॉश कर उनखा तना डी स्किन ब्यूटी क्रीम चेहरे से अप्लाई कंदा यो अगर प्रोसेस तुम कर बिन रातन के इस्तेमाल से तवे रिजल्ट वाजे जो नजर अचान शुरू थी वो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हु या डी स्किन फेस वॉश हुए बई चीजों तुम इस्तेमाल करो तुम्हें जबरदस्त रिजल्ट मिली वा ना मिलन अगर तवे एरिया में अवेलेबल ना तो डायल कर 03 1579 0595 कॉन्टेक्ट नंबर आए जिंदे तुम राबो करीबी जनरल स्टोर से ही तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए सको था। ओके जी सो ही तुम्हारा गड उ गाल जरूरी होंदय तुम्हें जी तुम खबर पई तो बाबा व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजन या डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजन इन जो इस्तेमाल तुम्हारे खूबसूरती के लिए केडो जरूरी है। उनके अलावा मु अज अवा का सवाल जो पुछा उनके रिपीट कंदी तो सवाल अज अवा पुछो एले बे से मोहब्बत छो जरूरी है यो तमाम मुख्य बुधा था तमाम खूबसूरत तमाम जरूरी सवाल मु अवा पुछो है
उन खां अलावा तव्हां मूंखे ज्वाइन कयो पिया 888-1 ते, फेसबुक ते, जेके माण्हू फेसबुक ते मूंखे ॿुधनि पिया, फेसबुक ते तव्हां मौजूदु आहियो, त तव्हां पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो, पंहिंजे दोस्तनि खे मेंशन कंदा कयो, जे उन्हनि खे बि ख़बर पवे त मार्केट में कहिड़ा प्रोडक्ट हलनि पिया, ऐं हुननि खे बि इस्तेमालु करणु ज़रूरी आहिनि. घुर्जन बाबा, हर कंहिंजी इहा बेसिक नीड हूंदी आहे त तव्हांजी जेका ख़ूबसूरती आहे न उहा हमेशह वधंदी रहे, ऐं अगरि तव्हांजी उमिरि थोरी वधंदी वेंदी आहे न, उमिरि सां जीअं जीअं उमिरि तव्हांजी वधंदी वेंदी, त तीअं ई तव्हांजी स्किन खे प्रोडक्ट ज़रूरी हूंदा आहिनि. प्रोडक्ट तव्हां इस्तेमालु कंदा कयो, अगरि तव्हांजी स्किन ते रिंकल अचणु शुरू थी विया आहिनि त तव्हांखे ज़रूरत आहे त तव्हांजी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो, जे तव्हांजे चहिरे जा जेके रिंकल आहिनि उहे ख़तम थी वञनि ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती में जेको आहे न इज़ाफ़ो अची वञे. सो लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो, अगरि तव्हां इस्तेमालु कयो पिया त मूंखे ॿुधाईंदा हलो.

ओके ॾिसो तव्हां सां सां गॾु मौजूद आहे, तव्हांजा फीडबैक्स आहिनि जेके असां शामली प्रोग्राम कंदा हलंदासीं, अगरि ॾिसूं था पैनल ते मैसेज आहिनि। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्राम है गोरजा से, दिलावर हुसैन सोलंगी बाजी सिद्राम केसी। टॉपिक आंसर, अहले बैत की मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में लाजमी है क्योंकि यही मोहब्बत कब्र में और कयामत के दिन शिफाहत का जरिया होगी। ओके जी, ड्राइवर नजीर सोलंगी हमारे साथ है, जमादार खुदाबख्श सोलंगी, मुदस्सिर सोलंगी, आसिफ एंड मुबशिर सोलंगी हमारे साथ हैं। तमाम भाइयों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और अरीबा हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम अरीबा, कहती हैं आप ही छाला, आप ही सफा ठीक है, तमाम बता किया आयो अरीबा। और हां जी बिल्कुल बिल्कुल किया था। और उनका अलावा जेको

ओही सी इमरान भाई भी असगर मौजूद है इमरान भाई तां जो मोहब्बतों प्रोग्राम बुधो पया आई उन का अलावा जको आ सो हिना भी असगर मौजूद है हिना भी असने शो बुधी पे हिना तवां जो भी मोहब्बतों आ है और अब्दुल खालिक गबोल भाई तवां जो मोहब्बतों आ है मोहम्मद जमान कह रहे बुआ जी आज वॉइस कुछ ज्यादा ही स्वीट लग रही है इसका कोई खास राज शायद आपने कुछ दिनों के बाद सुनी है तभी आपको ऐसा लग रहा होगा और वहीद वफाई आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है और फहीम शेख आपका भी बहुत थैंक यू मौलाई मुजाहिद बोजार कह रहे सिद्धू जी टॉपिक अहले बेत पंचतन पाक से मोहब्बत उतनी ही जरूरी है जैसे कि जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी है क्या बात है जी बहुत बढ़िया और चाचा खालिद कहते हैं कि ये नात लगा दें पॉसिबल फॉर यू जी जी बिल्कुल लगाते हैं आपने बड़ी अच्छी नात फरमाइश करी है और मोहम्मद रमजान हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते बाजी माशूक मोलाई शहर बांदी से आपका शो जबरदस्त चल रहा है मेरा मामू निजामदीन खास के लिए अच्छा वो भी आने की हमारा शो सुन रहा है बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया आपका मैसेज समझने में थोड़ी सी मुश्किल हुई लेकिन कोई बात नहीं जी आपका मैसेज हमें समझ आ गया और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा कसीदा लिस्ट में लगा लिया है जो कि हम साथ साथ सुनते रहेंगे आप लोगों के साथ बातें करते रहेंगे और मोहम्मद रमजान भाई आपका भी शुक्रिया और आपके मामू है निजामदीन खास के लिए उनका भी बहुत शुक्रिया और उसके अलावा अब्दुल खालिक गबोल हमारे साथ कहते ऐसा शहर जहांगर सेवन शरीफ आहे बाजी तवा एक क्रीम असा के गिफ्ट करी मोकलियो तवा जी मेहरबानी थींदी यानी कि सब हते उए मानु बैठा जे के गिफ्ट खपे पेरिया तो तवा एक दफो पाना वठो तवा के वणी वेदी उन खा पोई तवा लगाण स्टार्ट कयो आई पोई तवा के जको ना सा गिफ्ट नींदासी आई सब खा पेरिया ये गाल हुंदी ना अगर दिसो गिफ्टन जो सिस्टम अगर असा स्टार्ट भी कंदासी तो उन में यो हुंदो त तवा खा या त असा रेपर घुराइंदा आयो खाली या त तवा खा पुछंदा आयो पार पता तडी ता खबर त जने ता वट प्रोडक्ट अवेलेबल हुंदो सो ता पेरिया पाना वठो उन खा पोई ता के सा गिफ्ट नींदासी सही सो थोड़ो पान भी हथ पेरण

ओके जी, नियाज हुसैन मलिक हमारे साथ मौजूद है. बाजी आपकी बिल्कुल ठीक ठाक है, आज कहते हैं नाइस योर शो. थैंक यू वेरी मच नियाज हुसैन मलिक भाई. और गुलाम रहीम बलोच कहते हैं सलाम जबरदस्त प्रोग्राम. वोट झड़बी थर पारकर खां वफा गुलाम रहीम बलोच असा सगर मौजूद है. सुबह जो मोहब्बत वन प्रोग्राम बुधो पिया. और फिरोज अली बिरोही असा सगर मौजूद है. हेलो अदा. और किशोर भाई कहते सलाम अदा, खुश आयो अदा, तुम्हारा सफा ठीक मुझे अदा किया मजे में. और हैं जी हमारे साथ अच्छा चाचा खालिद कहते अमा उम्र की गाल कई तो मुख्य भी एहसास थो मुझी भी उम्र वधंदी पई वने. दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड टू मिस्टर इरफान सियाल साहब सेंड मी योर प्रोडक्ट्स. इरफान सियाल साहब आपको भेज देंगे जी, आप उनसे अच्छे से कांटेक्ट कीजिए और आपको मिल जाएंगे जी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड जी स्किन फेस वॉश. आप इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपकी जो बढ़ती उम्र है ना वो जरा कंट्रोल में आ जाए.

0: अच्छा दर्दे दिल कह रही है अस्सलाम वालेकुम चंदा कैसी हो, वेलकम टू शो, आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है दर्दे दिल। और साथ साथ चाचा खालिद कहते हैं बट मां त पेसन ते परचेज करना, बिल्कुल चाचा तां पेसन ते परचेज कयो। और न खां अलावा हमारे साथ हैं किशोर भागे थे, बढ़ती उम्र और गुजरता वक्त कभी किसी के रोकने से रुका है? आप ये जरा सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, अगर आप अपनी उम्र जो है ना वो ऐसा होता है जैसे आप एक्ट्रेस को देखेंगे, मैं बार बार इस बात को ऐसे इसलिए दोहराती हूँ ताकि ये चीज जरा आप लोगों को थोड़ी सी समझ आ जाए। एक ना वो अदाकार नहीं, वो विवाह मूवी वाली जो एक्ट्रेस है, वो कितनी पुरानी मूवी, आज भी अगर आप उस औरत को देखेंगे ना, उस औरत को अगर आप देखेंगे तो वो आपको 25 साल की लगेगी। और वो 25 साल की आपको क्यों लगेगी? क्योंकि उसकी उम्र क्यों नहीं बड़ी, जाहिर सी बात है वो उम्र तो उसकी काफी ज्यादा, लेकिन वो जो ना आज भी उतनी यंग लग रही है। तो ये ऐसा फायदा उन लोगों को मिलता है जो अपनी स्किन केयर कर रहे होते हैं, अपने चेहरे का ख्याल रख रहे होते हैं, उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जिनकी इस्तेमाल से आपकी जो स्किन है ना वो हमेशा ग्लोइंग रहती है, टाइट रहती है, आपके चेहरे के रिंकल नजर नहीं आते। तब आप जो है ना वो चाहे आपकी उम्र कितनी हो जाए लेकिन आप जो है ना वो हमेशा यंग और जवान नजर आते हैं। तो ये कमाल है जब आप अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं। वक्त जाहिर सी बात है वो किसी के हाथ नहीं आता, वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन ऐसा है कि आप अपनी स्किन का ख्याल रखकर आप अपनी उम्र जो है ना वो ऐसा फील करवा सकते हैं लोगों को कि आप अभी भी जवान हैं। और उम्र जैसे ढलती जाती है ना वैसे ही आपकी स्किन को जो है ना वो प्रोडक्ट की नीड होती है, आपकी स्किन जो है ना वो प्रोडक्ट मांगती है, तो उसे प्रोडक्ट दिया करें। और अगर आप जो है इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तब तो भाई क्या ही बात बन जाएगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, डी स्किन का फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, आप हमेशा खूबसूरत और ग्लो करते रहते हैं। तो इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरतियां हासिल करते रहिए। और मेरी बातें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि पता ही नहीं चलता यहाँ पर। हाँ जी, ब्रेक का टाइम हुआ जाता है तो हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी से वापस आप लोगों के पास आते हैं। तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए। आपका हमारे साथ पूरी पूरी 3 बजे तक प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए।
1: FM 88 Network, Sindh ki Awaaz.
2: Khoobsurti
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: ॾाढो सुठो
3: जी FM 88 Network,
2: सिंध की आवाज। खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार, सिर्फ बिन दीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म, दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
7: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
7: आई हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा।
6: 0331252576।
7: जी हाँ, बुड़ी 331 55 786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज।
8: वाली हिन सिंध ते का अड़ी वराण वरे जो सुख्या डुबरा पान में भाकुर विजू भरे ही कायम रहे कयामत ताई मोबद कड न मरे पंजल थियूं न परे जैसी जेरा आयो जान में।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

हिन नंबर ते तव्हां राबितो कयो। राबते करण खां फौरन बाद तव्हां उन्हनि खे ॾसियो त बाबा तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर्स ते पंहिंजे ॻोठ में पंहिंजे सिटी में पंहिंजे एरिया में अवेलेबल कराइण चाहियो था वाइटिश प्यूरी प्रोडक्ट्स या वरी जी स्किन प्यूरी प्रोडक्ट्स। तव्हां अवेलेबल करायो, अवेलेबल कराइण खां पोइ तव्हां परचेस कयो, परचेस करण खां पोइ तव्हां इस्तेमाल कयो। ओवीडी सो इस्तेमाल करते जाइए, खूबसूरती को बढ़ाते जा रहे, हमेशा खूबसूरत रहिए क्योंकि आपकी खूबसूरती अब आपके हाथों में है। जब आप इस्तेमाल करेंगे वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टीएनसी करते जाइए, अपने होने का एहसास लाते जाइए। और जरा मुझे ये बताइए कि आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ आगे हमें अंदाजा हो कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। ओके, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक तैयार की गई है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक व्हाइटनिंग नाइट क्रीम है जो कि सिर्फ दो दिनों में आप लोगों को वाजे नतायज देती है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि ये कितनी जबरदस्त क्वालिटी की प्रोडक्ट है जो कि जदीद अज़ा से तैयार की गई है, जिसके अंदर वो तमाम चीजें एड की गई है जो कि आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए है। और साथ साथ जब आप इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपकी जल्द को चमकदार बनाने के लिए आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट्स वो खत्म हो जाते हैं, आपके चेहरे पर जो है ना वो इतना खूबसूरत सा निखार आना स्टार्ट हो जाता है कि आप खुद ही कहते हैं कि हम पहले क्यों नहीं लगा रहे थे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, चेहरे को चमकदार बनाती है और आपके चेहरे की स्किन जो है वो ऐसा होता है कि भाई ऐसा महसूस होता है कि भाई अंदर से कोई चीज आपकी स्किन पे गई है और अंदर से आपकी खूबसूरती जो ना वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन ई बीड्स इसके अंदर मौजूद है, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन से तैयार की गई है, तो आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। और उसके अलावा जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करें तो साथ में आपके लिए डी स्किन फेस वॉश भी अवेलेबल है। और डी स्किन फेस वॉश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, तो लाजमी आप ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लड़के लड़कियां सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप के लिए है, हर स्किन टोन के ऊपर आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ दो रातें आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ट्राई करके देखिए, खूबसूरती अब आप इजीली हासिल कर सकते हैं जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरती को बढ़ाते रहिए और हमेशा खूबसूरत होती रहिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर सनम मारवी की आवाज में एक बहुत प्यारा कलाम मैंने लिस्ट में लगाया है, तो इस कलाम को साथ साथ सुनेंगे। आप क्या कह रही हैं, आपके फीडबैक्स की जाने भी आते हैं। व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल करती रहिए, खूबसूरतियाँ हासिल करती रहिए।

क्या बात है। ओके जी, सो हमारे साथ यहाँ पर इरम मौजूद है। इरम, आपने मैसेज किया है जी नहीं मैं नहीं जाती, और ये साजन माशी हमारे साथ मौजूद है, गोर जान मोहम्मद माशी। ओके जी, आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रही है, अगर मैसेज थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है तो माजरत कर देती हैं, आप हमारे साथ हैं। और उसके अलावा जी हमारे साथ मायरा हमारा शो सुन रही है, मायरा आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। अच्छा, अब्दुल खालिक गबोल भाई लिखते हैं, हाणे हिकड़ो क्रीम वठबो तव्हां ते भरोसो करे ॾिसूं था। बिल्कुल जी, तव्हां असां ते भरोसो करे ॾिसूं था, तव्हां क्रीम वठो, चाहे उहा डे स्किन ब्यूटी क्रीम।

हुजे या फिर व्हाइटिश प्यूरी क्रीम हुजे लगाइण खां पोइ तव्हां खे अंदाज़ो थी वेंदो त वाकई तव्हां जेको प्रोडक्ट वरितो आहे उहो जहिड़ो तहिड़ो नाहे बाबा. हीउ प्रोडक्ट वाकई सफ़ा ख़ूबसूरत आहिनि, तव्हां खे ख़ूबसूरत बणाए छॾींदा. सो ट्राए करे ॾिसजो. और मोहम्मद समान खे तंहिं बुआ जी हाँ भाई क्या ही कर सकते हैं भला. नहीं नहीं चाचा वो मैं इनकी बात नहीं कर रही थी.

चलिए सो टाइम देखा तो जरा टाइम हमारे अलविदा कहने का करीब आ चुका है। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं और जाते जाते कहकर जाऊंगी कि आप तमाम लोग जितने भी हमें सुन रहे हैं, आप सारे लोग चाहे वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करें तो आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम है, डी स्किन फेस वॉश है, वाइट एज ब्यूटी क्रीम है, वाइट एज लवली क्रीम है, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है, वाइट एज सोप है, फेस वॉश है, लोशन है, उसके अलावा हेयर रिमूवल की लोशन है, मुख्तलिफ तीन अलग अलग फ्लेवर्स के अंदर जो कि आप ट्राई कीजिएगा, आप इस्तेमाल कीजिएगा और आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो आप मर्द हजरात हैं, ख्वातीन सारे लोगों के लिए तैयार की गई ऑल स्किन टाइप के लिए, तो आप इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरतियों को बढ़ाते रहिए और इसी के साथ साथ हम इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे जी कल वाले प्रोग्राम में। तो कल 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहने वाला है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कहीं कोई गलती हो गई तो हम माजरत ख्वाह हैं, कोई ऐसा लफ्ज बोल दिया जो आपको अच्छा ना लगा हो तो उसके लिए भी माजरत करते हैं। सो मोगलानी नाही बाबू सिंह सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: त पाकिस्तान जी कोशिशुनि सां अमरीका ऐं ईरान में इस्लामाबाद मफ़ामत ते सयूं थियूं। खिते में अमन जे क़याम लाइ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जूं बि कोशिशूं साराह जोगियूं हुयूं। ईरानी सदर मसूद पख़्शान पारां पाकिस्तान जो दौरो इस्लामाबाद जे अहम किरदार जो एतिराफ़ हो। खिते में थींदड़ वॾनि तब्दीलनि जो असर बि जल्द ज़ाहिर थींदा। पाकिस्तान दुनिया में अमन जो अलमबरदार तौरु उभरियो आहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राख़्ती सां फोन ते राब्तो। अब्बास राख़्ती पारां मुहाणनि जी वापसी ते पाकिस्तान जी वाखाण। बिन्ही परडे॒ही वज़ीरनि पारां अमुन खे अती ॾियण वारे अज़म जो वर्जाओ। परडे॒ही आफ़ीस मौजिबि इसहाक डार परडे॒ही वज़ीर अब्बास राख़्ती खे चयो त खिते में पायदार अमुन लाइ इस्लामाबाद अमुन अमल खे वधाइण में तामीरी किरदार अदा कंदो रहंदो। अब्बास राख़्ती अमुन कोशिशुनि लाइ पाकिस्तान जे सहकार जिते बि थोरा मञा। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्स जो ॿिनि हंधनि ते ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द मारिजी विया। एसपीआर मूजिब खारान ऐं मस्तूंग में 25 ऐं 26 जून ते ऑपरेशन कयो वियो। खारान में ऑपरेशन दौरान 3 दहशतगर्द ऐं मस्तूंग में 5 भारतीय हामी दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियल दहशतगर्दनि शहरनि ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि ते हमलनि में मुलवस हुआ। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां 5 ॼणनि जा लाश। ॿिनि सुञाणप आदू वेझो मरीज़नि जे घोट मां नौजवान जो घर आॾो गोली लॻल लाश मिलियो। नौजवान सुञाणप पीर बख़्श वल्द अमीर बख़्श मरी तौर थी। ठुल मां गुम ॼाणियल नौजवान मिथल बुरड़ो जो वाह मां लाश मिलियो। नौजवान गुज़िरियल ॾींहं घरां निकिरण बाद गुम थी वियो हो। रतो देरो भरिसां होटल ते फोरियो कंदड़ नौजवान जो लाश हथ पुलिस मौजिब फोती पोरत बशीर भुटो होटल ते कम कंदो हो। सन भरिसां इंडस हाईवे तां नामालूम शख़्स जो कपड़नि खां आजो लाश हथ सुञाणप न थी। नुसरत फिरोज़ भरिसां बि क़ौमी शाहराह तां पीरसन जो लाश हथ सुञाणप न थी।
1: मुसलसल 2 महीना पिया आहिनि त उन्हनि जी पुखियुनि ताईं पाणी पीअण जे लाइ न आहे। पखी पकड़ माण्हू वञी मरंदा। असांजे ॿिन महीननि खां वठी पाणी न आहे मिलियो।
0: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शाखनि ऐं वाहनि में पाणी जी शदीद खोट बरक़रार। आबादगार सरापा एहतजाज। जमाल शाह जे मीर रुकण शाख जे आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ कोडरूं खणी एहतजाज कयो। कोरवा जे चोरवा शाख जे आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। झोल जे शाहूवा जे पुथरी जे आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ सांगल रोड ते धरणो। अठहठि मोरी भरिसां जाम लगारी शाख जे पुथरी में पाणी जे खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि एहतजाज कयो। सन ऐं मांझंदि में पाणी खोट ख़तम न थी। आबादगारनि जो एहतजाज। कराची जी अदालत में बीआरटी करप्शन केस जी ॿुधणी। जवाबदार ज़मीर अब्बासी वरी 6 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते एंटी करप्शन हवाले। ॿुधणी दौरान अदालत जांच आफ़ीसर खां सवाल कयो जवाबदार जो बयान खे रिकॉर्ड जो हिसो बणायो वियो आहे या न। जांच आफ़ीसर ॿुधायो त जवाबदार ज़मीर अब्बासी जे बयान खे रिकॉर्ड जो हिसो बणायो वियो आहे। ॿुधणी दौरान जवाबदार ज़मीर अब्बासी अदालत खे ॿुधायो त ख़बर न आहे त छो सां फैमिली जा बैंक अकाउंट्स ऐं ॿिया तफ़सील छो तलब कया पिया वञनि। मनसूबे जो कंसल्टेंट बि हिकु वफ़ाकी वज़ीर जो वेझो माण्हू आहे। छा मां रोक रक़म खणी भॼी वियो आहियां। अदालत केस जी ॿुधणी 1 जून ताईं मुलतवी करे छॾी। बलीर में वकीलनि पारां ॿिनि वकीलनि ते केस दाख़िल थियण ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई जो बायकॉट। वकीलनि जो चवण आहे त कोरंगी जे ज़मान टाउन थाणे ते ॿिनि वकीलनि ते सियासी जमायत सां तालुक ॼाणाए केस दाख़िल कयो वियो आहे। केस ख़तम कयो वञे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में नीगर समेत 4 ॼणा वेंझ ते ॿुॾी विया। हिकु जो लाश हथ ॿिनि जी गोला जारी। न्यू सैदाबाद वेझो नौजवान रहीम कोरी रोड़ी केनाल में ॿुॾी पियो। गोला जारी। सखर भरिसां बि नारा केनाल में ॿुॾी पियल नींगर मजीद मिराणी जो बि 2 ॾींहं बि लाश न मिलियो। गंबट वेझो नींगर लाल बख़्श भटी वाह में ॿुॾी पियो। गोला जारी। लाड़काणे में गुज़िरियल ॾींहं राइस केनाल में ॿुॾी पियल नौजवान मुज़म्मल शेख जो लाश हथ। पटियारी भरिसां मजीदाणा बिरादरी जे बिंदुनि में झेड़ो। 6 ॼणा ज़ख़्मी। मुतासिर थियो जो जवाबदार जी गिरफ़्तारी लाइ क़ौमी शाहराह ते धरणो। जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। उबाड़ो भरिसां तेज़ रफ़्तार टालर मोटरसाइकिल सवारनि मथां चढ़ी पियो। बनीगिरियूं चिबाट जी फौत। 1 ॼणो ज़ख़्मी। आलूगोट वटि क़ौमी शाहराह ते हादसो पेश आयो। हादसे जे नतीजे में बासूम नीगरियूं फौत थी पियूं। नौजवान सलीम कादर सख़्त ज़ख़्मी। लाश ऐं ज़ख़्मी अस्पताल मुंतकिल। टालर ड्राइवर गिरफ़्तार। بیراریڈ میں نینگر کے مبینہ طور سے بچ کر جو نشانوں بڑھائی دل بنو جوابدار گرفتار گوشت مارکیٹ میں مبینہ طور سے بن جوابدار شاگرد کے مبینہ طور سے بچ کر جو نشانوں بڑھائے ہو ایس ایس پی کے حکم تھے جوابدار عبدالحسیب قریشی ہیں شعیب راجپوت کے گرفتار کرے ہوئے نینگر میڈیکل لائس پر
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: سندھ کے ماتھے کا جھومر
4: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
5: سندھ کی آواز
6: پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
7: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
6: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
7: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
6: بس پو ہانے کھڑو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
7: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
6: 0331252578
7: جی ہاں بڑی 631525786
6: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
7: سندھ جو آواز

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भर जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252578 6।
5: जी हाँ 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अमरीकी दिफाई मागन के निशानो बनाने की दावा। अमरीकी सेंट का मौजूद ईरान जो ड्रोन ए मिजाइल स्टोरेज ए सारी रेडार्स के निशानो बनाया वो है। अमरीकी कार्रवाई ईरानी ड्रोन हमले जो ताकतवर जवाब हो। ईरानी पासदान इनकलाब के अमरीकी हमला नाकाम बनाने की दावा। पासदान इनकलाब चवे ईरानी बहरिया ए फिजाई सिरक शहर से अमरीकी हमले के नाकाम बनाया है। जवाब में ईरानी फौजी खिते में मौजूद अमरीकी अड्डन के निशानो बनाया है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पारा तशद्दुद जो जवाब तशद्दुद जरिए डण की धमकी। जेडी वेंस है त जंगबंदी मुआहदे से ईरान के सयूं करण बाद इज्जत दिनी है। ईरान के मुआहदे के खिलाफ आन तो सीधी रीत बुधा सन था। ईरान अमरीकी अमलन के मुआहदे की भंजकड़ी करार दई छो। ईरानी परदेही वजारत है वेचो भर जहा मुल्क अमरीका खिलाफ पैं सरजमीन इस्तेमाल थे न दिन। इब्राहिम अजीजी है तो अमरीकी सदर साबित किया हु असूलन तोड़े मुआहदे जो एतराम न थो करे। पाकिस्तान पैं सरजमीन त हर कीमत दहशतगर्दी के खत्म कन्दो। असाजे पारिस्थितिकी शिकस्त बाद प्रॉक्सीज जो सहारो वठी रो है। पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे लिए पुरजम है। कराची में पाक पेरिया की पासिंग आउट परेड के खिताब कन्दे वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान की कोशिशन से अमरीका ए ईरान में इस्लामाबाद मफामत से सयू थ खिते मेमून के क्याम लाए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो कोशिशों भी सहारा जोगियो। ईरानी सदर मसूद पजान पारा पाकिस्तान जो दौरों इस्लामाबाद के अहम किरदार जो इतराफ हो। खिते में थन्द वन तब्दीलन जो असर भी जल्द जाहिर थन्दा। पाकिस्तान दुनिया में अमन जो अलमबरदार तौर उभर है। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जो बिन हंधन से ऑपरेशन अठ दहशतगर्द मारजी व्या। आईएसपीआर मौजूब खारान ए मस्तोंग में पंजवी आए 26 जून से ऑपरेशन किया वो। खारान में ऑपरेशन दौरान टे दहशतगर्द मस्तोंग में पंज भारतीय हामी दहशतगर्द मारजी व्या। मारजी वाल दहशतगर्द शहर ने कानून लोकन इदारन से हमलन में मुलवस हुआ। समूरी दुनिया में मोटरवेज पोर्ट सिटी का शुरू थन्दा। हैदराबाद कराची या सक्कर हैदराबाद मोटरवेज इन पर मुल्क की जरूरत है। सूबाई वजीर नासिर शाह चाहे तो सिंध के इन भेरे वफाक कुछ स्कीमू डिन्यू आन। उम्मीद है हाँ सिंध के मोटरवेज से भी ध्यान दिनों वो। प्रिया कुमारी असि बुनियाणी है।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, जीए एफएम 90.4।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 3135525786।
2: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: पहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: 642 वो ऑपरेशंस किए हैं जिसमें FIRs 85 कटी हैं और 66 इसमें जो हैं मुख्तलिफ टेररिस्ट को अरेस्ट किया गया है और उसमें मुख्तलिफ एक डिटेल्ड है जिसमें कि हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के वो डिटेलिंग सामने आ रही है। यकीनन हमारे पास मोबाइल स्नैचिंग को अगर हम देखें, ये अगर देखेंगे तो इसमें ये पीछे कीजिएगा जो कि ये जो मज़दा आप देख रहे हैं इसमें 2000 केजी मटेरियल था जो कि धमाका होना था कराची में, कहीं ना कहीं इशू होता लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह IBO हुआ मुख्तलिफ, उसमें हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने वो कंडक्ट किया, CTD ने इस ऑपरेशन को लीड किया और ये जो है बहुत बड़ा एफर्ट्स के साथ ये रिकवरी हुई। यहाँ पर जो मेन इशू है हमारे पास कराची में मोबाइल स्नैचिंग का बहुत ज्यादा है और मोबाइल स्नैचिंग के हवाले से CPLC एक ऐप बना रही है जिसमें कि हमारे पास उससे काफी फायदा होगा। उसमें उस ऐप में CPLC उसमें जो हमारे यहाँ पर बेचने वाले हैं मुख्तलिफ ताजरान वहां पर वो उनके साथ कनेक्शन होगा और CPLC का, और जो भी अगर कोई मोबाइल बेचने जा रहा है कोई ओल्ड या न्यू बेच रहा है वो रजिस्टर होगा CPLC में, उसकी IMEI जो नंबर है वो रजिस्टर होगा और उसके बाद वो जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो उसके बाद ये होगा कि फाइनली जब भी कोई ऐसी कोई चोरी का मोबाइल या स्नैच वाला मोबाइल कोई बेचने जाएगा हो तो वो यकीनन उस ऐप में वो बीप हो रहा होगा जैसे ही उसकी IMEI नंबर आएगा। तो CPLC इस पर काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि CPLC इस ऐप से काफी हमें फायदा होगा खास करके मोबाइल स्नैचिंग को कवर करने में उसका जो रेट है। और मैं CPLC के हवाले से भी यहाँ पर काफी उनकी एफर्ट्स हैं और वो भी जिक्र करूंगा कि इन्होंने जो मोबाइल स्नैच हुए अपनी ऐप के थ्रू 2458 मोबाइल्स रिकवर किए जो कि अभी तक उनके ओनर्स को तकरीबन 1356 मोबाइल दे चुके हैं। तो यकीनन CPLC इस पर काम कर रही है। मैं एक बात का जरूर जिक्र करूंगा कि यहां पर हमारे जो कच्चा जो हमारे पास इशू था कच्चे का उसमें हमेशा सिंध गवर्नमेंट पर तनकीद हो रही थी। अगर ये देखेंगे ये जो मैप बना हुआ है ये हमारा कच्चे का मैप है जो कि तकरीबन 140 किलोमीटर घोटकी उबावड़ों से लेकर सखर तक इसका लेंथ है जो कि हमारे घोटकी डिस्ट्रिक्ट सखर डिस्ट्रिक्ट और कश्मोर डिस्ट्रिक्ट और शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट तक मही थे जो कि प्रॉब्लमेटिक था। अगर इस सारे एरिया में हमारे निजात मेहरान हम
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो? पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331252578 6।
3: जी हा 3135525786
4: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252578 6।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अमेरिका ऐं ईरान जो हिक ॿिए जे दिफ़ाई मागनि खे निशानो बणाइण जी दावा। अमेरिकी सेनका मूजिबि ईरान जे ड्रोन ऐं मिज़ाइल स्टोरेज ऐं साहिली रिटास खे निशानो बणायो वियो आहे। अमेरिकी कार्रवाई ईरानी ड्रोन हमले जो ताक़तवर जवाब हो। ईरानी बाज़ारनि इनकलाब जी अमेरिकी हमला नाकाम बणाइण जी दावा। बाज़ारनि इनकलाब चयो आहे त ईरानी बहरिया ऐं फज़ाइया सरक्षण ते अमेरिकी हमले खे नाकाम बणायो आहे। जवाब में ईरानी फ़ौजी ख़िते में मौजूद अमेरिकी अॾनि खे निशानो बणायो। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस पारां तशदुद जवाब तशदुद ज़रिए ॾियण जी धमकी। जे डी वेंस चयो आहे त जंगवदी मुआदे ते ईरान खे सयूं करण बाद इज़त ॾिनी आहे। ईरान खे मुआदे ते इख़्तिलाफ़ आहिनि त सिधी रीति ॿुधाए सघनि हा। ईरान अमेरिकी हमलनि खे मुआदे जी भञकड़ी करार ॾेई छॾियो। ईरानी परडेही वज़ारत चयो आहे त विच ओभर जा मुल्क अमेरिका ख़िलाफ़ पंहिंजी सरज़मीन इस्तेमाल थियण न ॾियनि। इब्राहिम अज़ीज़ी चयो त अमेरिकी सदर साबित कयो त हू उसूलनि तोड़े मुआदे जो एहतराम नथो करे। बहरैन ईरानी ड्रोन हमलनि जी तस्दीक करे छॾी। हमला ख़ुदमुख़्तारी ख़िलाफ़ ऐं मुआदे जी भञकड़ी करार। बहरैनी हुकूमत जारी कयल बयान में चयो आहे त ईरानी ड्रोन हमला ख़िते में जारी अमन कोशिशुनि जे लाइ नुक़सानकार आहिनि। बहरैन खे पंहिंजी ख़ुदमुख़्तारी ऐं इलाइक़ाई सलामती ऐं दिफ़ा जो हक़ हासिल आहे।
1: आप पार्लियामेंट्री लीडर जी तहा साहब आप कर लेंगे।

पाकिस्तान पंहिंजी सरज़मीन तां हर क़ीमत ते दहशतगर्दीअ खे ख़तम कंदो। असांजो पाड़ेसरी शिकस्त बाद प्रॉक्सीज़ जो सहारो वठी रहियो आहे। पाक फ़ौज दहशतगर्दी जे ख़ात्मे जे लाइ पुरज़म आहे। कराची में पाक बहरी अॾी पासे गाउट परेड खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तान जी कोशिशुनि सां अमेरिका ऐं ईरान में इस्लामाबाद मुफ़ाहिमत ते सहियूं थियूं। ख़िते में अमन जे क़याम जे लाइ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जूं कोशिशूं बि साराह जोगियूं आहिनि। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान पारां पाकिस्तान जो दौरो इस्लामाबाद जे अहम किरदार जो एतिराफ़ हो। ख़िते में थींदड़ वॾियुनि तब्दीलियुनि जो असर बि जल्द ज़ाहिर थींदो। पाकिस्तान दुनिया में अमन जो अलमबरदार तौरु उभरियो आहे।

0: मुसलसल ॿ महीना थिया आहिनि त उन्हनि जी पुछड़नि ताईं पाणी पीअण जे लाइ न आहे। पकी पकड़ माण्हू वञी मरंदा।
1: असांजे ॿिनि महीननि खां वठी पाणी न आहे मिलियो।
2: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शाखनि वाहन में पाणीअ जी शदीद खोट बरक़रार। आबादगार सरापा एहतजाज। जमा शाह आजमी रुकण शाख जे आबादगारनि जो पाणी जी खोट ख़िलाफ़ कोडरूं खणी एहतजाज। खोरवा जे चोरवा शाख जे आबादगारनि जो पाणी जी खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। झोल जे शाहूआ जी पुछड़ी जे आबादगारनि जो पाणी जी खोट ख़िलाफ़ सांगर रोड ते धरणो। अठहठि मोरीफ़ सां जाम विकारी शाख जे पुछड़ीअ में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। सन ऐं मांझनि में बि पाणी जी खोट ख़तम न थी, आबादगारनि जो एहतजाज।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो जीए एफएम 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: आई हां गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाण लाए
4: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हे नंबर ते राबतो कंदा
3: 0331252578।
4: जी हां 2315525786
3: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
0: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे मातली असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बक हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252586
0: जी हां 2315525786
1: जी एफएम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: कलमा पढ़ो ते एक फेरा देहर पढ़न बिया बल बल पढ़न दे यार सजर दी हूं दिसा को जुदाई मुस्लिम विचों काफर थीवन ए केरी हुंदी अदाई यार मुस्तफा जैसी जीवे एरी करे न अंधाई
1: अदा मजबूर आशिक के मेरा यार दोस्त रोकिन था त तू पहले महबूब सम्मेलन न वन तुझा दुश्मन टोके होते तुझा वेरी मारे वेजंदा अर्ज करे पियो मां मौत खाना थो रजा बहरहाल महबूब जो दीदार जरूर करणो पवंदो मां त घणो पंहिंजे पाण खे रोकियां पर छा करियां मुंहिंजी दिलि नथी रहे।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: रूरल एरिया में जाते भी हैं, एक भी रोड खराब नहीं है पूरे सिंध का। मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं, एक भी सड़क आपको खराब सड़क नहीं मिली। हाँ, जो वो सड़कें जो वफाकी हुकूमत के अंडर है, नेशनल हाईवे की है, उसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है यहां पर। उस पर वो काम करने के लिए तैयार नहीं। कभी पता चलता है कि 10% रख रहे हैं, 20% रख रहे हैं। तो सिंध हुकूमत के जेर इस्तेमाल जितनी सड़कें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। सिंध की तमाम सड़कें बहुत बेहतर बनी हुई है। और हम अपने इलाकों में क्या कर रहे हैं, हम अपने इलाकों में जहां पे हमारे रूरल एरियाज हैं, उन रूरल एरियाज में अब हम जो कच्चे कच्चे रस्ते थे उनको भी हम पेवर ब्लॉक लगा रहे हैं। आप चले मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको दिखाऊं किस तरह हम पेवर ब्लॉक हर गांव में, हर जगह में लगा रहे हैं, ताकि लोगों को ये भी सहूलत दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें हैं, बेहतर तरीके से चल रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सरदार शाह साहब की बड़ी तकरीर थी, उसमें मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन सर ये तो माने ना कि 97,000 टीचर्स PST और GST जो है इन्होंने अपॉइंट किए और एक भी कंप्लेंट नहीं है यार। 97,000 टीचर्स भर्ती हुए, एक भी कंप्लेंट नहीं है कि जी कोई सिफारशी पास हो गया, कोई जो है कोई पैसों पे पास हो गया, कोई करप्शन पे पास हो गया, कोई रिश्तेदार पास। मुझे याद है सईद गनी साहब उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे, इन्होंने बोला शायद इनकी फैमिली मेंबर कोई जो है फेल हो गए। सरदार शाह साहब बाद में एजुकेशन मिनिस्टर बने, बोले जी मेरा सेक्रेटरी एजुकेशन था शायद, उसका कोई भाई था, पता नहीं क्या, बोले वो फेल हो गया। तो यार उस पर तो आप लोग कम से कम अप्रिशिएट करो कि यार हुकूमत सिंध जो है, और ये बहुत बड़ी भर्ती थी, 97,000 की भर्ती हो, रिक्रूटमेंट हो, और एक भी कंप्लेंट ना हो, कोई एक झूठा इल्जाम लगाने वाला भी नहीं पैदा हुआ। तो इसको आप अप्रिशिएट करें कि हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स किस तरीके से बेहतर काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे होम मिनिस्टर साहब की 1.5 घंटे की तकरीर के बाद मेरा बोलना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन होम मिनिस्टर साहब ने बहुत तफसीली बताया। लेकिन जो जिस तरीके से उन्होंने बात की, सर ये कराची क्या होता था, कराची की मैं आगे कराची में बात करूंगा, लेकिन ये कराची में आज भी हम जरा पूरे पाकिस्तान का टूर करते हैं, मिलते हैं लोगों से, पूछे कराची के लिए, लोगों के जहन में कराची के लिए अभी भी एक हवा पैदा की, उसमें मैं आता हूं हवा किस तरह पैदा हुआ और क्या हुआ। लेकिन उसके लिए एक हवा पैदा हुआ, लेकिन अब वो कराची नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ कराची, अब आपका कश्मीर देख लें, अब आपका शिकारपुर देख लें, अपना अपर सिंध देख लें, लोअर सिंध देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून के साथ आप गुजर सकते हैं। आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, आपकी पुलिस की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, पुलिसिंग बहुत अच्छी हुई है, पुलिस ने बेहतर काम किया, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जहां पे बता रहे थे कि जी यहां पे 100 मकवी होते थे, आज होम मिनिस्टर साहब बता रहे थे कि एक भी मकवी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बड़ा और क्रेडिट क्या देना चाहिए कि जी हुकूमत सिंध हर सेक्टर में काम करे और हम होम में भी काम करें। सर एग्रीकल्चर में हमने जिस तरीके से हरी कार्ड दिए और किसानों के लिए सैलाब में भी मदद की और बाकी सारी हर टाइम पे उनके साथ खड़े रहे, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छा काम हुकूमत सिंध ने किया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमारा एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत सैयद कायम अली शाह साहब ने की, लेकिन उसके बाद जिस तरह चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब ने इसको कंटिन्यू किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए बनाए गए, आपके रोड बनाए गए, आपके ब्रिजेस बनाए गए, आपका धाबेजी इकोनॉमिक जोन, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शाहरा भुट्टो जिसको आप लोगों के इसमें प्रॉब्लम होते हो, मैं पता है साबिर भाई अगर हैदराबाद जाता होगा शाहरा भुट्टो तो जाता होगा, जाते नहीं जाते साबिर भाई, जाते नहीं जाते, आप भी जाते हो सर, कैसा लगा रोड आपको? हाँ इनाम में जाओगे तो भाई, हाँ सर घर घुमाया, कैसा लगा रोड आपको? हाँ भाई कैसा, कैसी सड़क लगी? रोड अच्छा बना था, लेकिन तकरीर में नहीं कहा उन्होंने, अभी मुझे बोले कि रोड अच्छा था, तकरीर में एक दफा भी तारीफ नहीं की शाहरा भुट्टो की, लेकिन अच्छी बात है मुझे पता है।
2: मैं विटनेस कर दूं, इनको सबसे पहले मैंने दावत दी थी, किरण बाजी उनकी बेटी की शादी में मैंने दावत दी थी कि आप शाहरा भुट्टो इस्तेमाल करें,
1: हमारे हैदराबाद के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के,
2: और इन्होंने किया और तारीफ
1: बता रहे हैं कि हम शाहरा भुट्टो से जाते हैं, और इन्होंने शाहरा भुट्टो की तारीफ नहीं की तकरीब, लेकिन अगली दफा अगले बजट में कर लीजिएगा।
2: नहीं इन्होंने मेरे साथ की थी, मेरे सामने की थी
1: जी सर। अच्छा सर, तो मैंने कहा कि ये अच्छा फिर ये M5 जो आपके M5 और M9 को मिलाने वाला लिंक रोड है वो भी इंशाल्लाह इसी साल कंप्लीट हो रहा है। ये एक और बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपकी नबी सर वेजीआर की पाइपलाइन जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो कंप्लीट हो रही है। आपका हैदराबाद में पुखा सा पुराना रोड उसमें साबिर भाई 10 दफा आ चुके हैं, वो रोड भी स्टेट ऑफ द आर्ट बना है, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का पहला प्रोजेक्ट था सिंध का। फिर आपका जो है कराची ठट्टा ड्यूल कैरेज भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट था। जिर्क मुलाकात ब्रिज कराची जामशोरो शहीद बनीजराबाद सखर में जो कि बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लड सेंटर वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बने। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आपके घोट की कंकोट ब्रिज है, 3 कंसेशन एग्रीमेंट साइन किए उन्होंने अभी रिसेंटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जिसके बाद सिंध गवर्नमेंट जो है वो आपके कार्बन क्रेडिट्स में भी शेयर होल्डर होगी और आपकी फॉरेस्टेशन बढ़ेगी। जब फॉरेस्टेशन बढ़ेगी तो आपके माहौल भी बेहतर होगा। तो इस तरीके से सर NED का टेक पार्क उसका कंसेशन साइन हो गया, मार्बल सिटी बन रहा है कराची पोर्ट से लेकर कयूम आबाद। यार ये प्रोजेक्ट तो आप उन्होंने जिक्र ही नहीं किया, सबसे बेहतर प्रोजेक्ट बन रहा है कि पूरा 90% एलिवेटेड प्रोजेक्ट है सर कराची पोर्ट से लेके।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
5: आई। हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
4: 0331252578 6।
5: जी हाँ 2315525786
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: It's 8:15 PM.
3: This time check is brought to you by
4: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.

दोस्तो यो हर कोई मानू चवंदो आ त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया पर इन्हें किसे जी की के शायद खबर न हुंदी तो यो की छो छो सडियो त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया आश्क वेचारो जदा बीमार थो यो किसो ताके आ सही करे तो बुझाया आश्क वेचारो जदा बीमार थो पंजे माइटन दोस्तन के चई तो मुखे पंजे महबूब जे मुल्क ते खणी हलो आ उते मरंदुस तो महबूब मुझो कुल्हे कांधी थे ओ मुझा

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM
2: 90.4। पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
3: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हाँ 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

लॻाए छॾियो। अमेरिकी सेनका मूजिबि ईरान जे ड्रोन ऐं मिज़ाइल स्टोरेज ऐं साहिली रिडार्स खे निशानो बणायो वियो आहे। अमेरिकी कार्रवाई ईरानी ड्रोन हमले जो ताक़तवर जवाब हो। ईरानी पासदारनि इनकलाब अमेरिकी हमला नाकाम बणाइण जी दावा करे छॾी। पासदारनि इनकलाब चयो आहे त ईरानी बहरिया ऐं फिज़ाया सैरक शहर ते अमेरिकी हमले खे नाकाम बणायो आहे। जवाब में ईरानी फ़ौज ख़िते में मौजूदु अमेरिकी अॾनि खे निशानो बणायो। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त अमेरिका जंगबंदीअ जी भञकड़ी कई, ईरान दिफ़ाई कार्रवायूं कयूं आहिनि। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस पारां तशद जो जवाब तशद ज़रिए ॾियण जी धमकी। जे डी वेंस चयो आहे त जंगबंदी मुआदे ते ईरान खे सयूं करण बाद इज़त ॾिनी आहे। ईरान खे मुआदे ते इख़्तिलाफ़ आहिनि त सिधी रीत ॿुधाए सघनि हा। ईरान अमेरिकी हमलनि खे मुआदे जी भञकड़ी करारे छॾियो। ईरानी परॾेही वज़ारत चयो आहे त विच ओभर जा मुल्क अमेरिका ख़िलाफ़ पंहिंजी सरज़मीन इस्तेमाल थियण न ॾियनि। इब्राहिम अज़ीज़ी चयो त अमेरिकी सदर साबित कयो त हू उसूलनि तोड़े मुआदे जो एहतराम नथो करे।

पाकिस्तान पंहिंजी सरज़मीन तां हर क़ीमत ते दहशतगर्दीअ खे ख़तमु कंदो। असांजो पाड़ेसरी शिकस्त बाद प्रॉक्सीज जो सहारो वठी रहियो आहे। पाक फ़ौज दहशतगर्दी जे ख़ात्मे जे लाइ पुराज़म आहे। कराचीअ में पाक बहरिया जी पासिंग आउट परेड खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तान जी कोशिशुनि सां अमेरिका ऐं ईरान में इस्लामाबाद मुफ़ाहमत ते सहियूं थियूं। ख़िते में अमन जे क़याम जे लाइ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जूं कोशिशूं बि साराह जोगियूं हुयूं। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान पारां पाकिस्तान जो दौरो इस्लामाबाद जे अहम किरदार जो एतराफ़ हो। ख़िते में थींदड़ वॾियुनि तब्दीलियुनि जो असर बि जल्द ज़ाहिर थींदो। पाकिस्तान दुनिया में अमन जो अलमबरदार थी उभरियो आहे। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ॿिनि हंधनि ते ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिबि खारान ऐं मसोंग में 25 ऐं 26 जून ते ऑपरेशन कयो वियो। खारान में ऑपरेशन दौरान 3 दहशतगर्द ऐं मसोंग में 5 भारतीय हामी दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियल दहशतगर्द शहरनि ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि ते हमलनि में मुलविस हुआ। सभ खां वधीक सहाफ़ी सिंध में आज़ाद आहिनि। इन आज़ादी जो शिकार बि सिंध हुकूमत ई बणिजे थी। शहजील इनाम मेमन जो सिंध असेंबली में ख़िताब। शहजील इनाम मेमन चयो त माज़ीअ में पीपल्स पार्टी ख़िलाफ़ 32 मीडिया ट्रायल्स थिया। सिंध वाहिद सूबो आहे जंहिं जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल ठाहियो। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जे लाइ AI खां मदद वठी रहिया आहियूं। असां कंहिं बि सहाफ़ीअ ते पीका एक्ट तहत केस दाख़िल नाहे करायो। रिणपट में कम करणु सवलो ऐं शहरनि में ॾुखियो हूंदो आहे। सिंध हुकूमत जे लाइ आसान हो त BRT ठाहे ई न हा, पर आवाम ख़ातिर मनसूबो शुरू कयो। ठेकेदार खे अॻवाट पैसा ॾियण ते BRT ऑफिसर ख़िलाफ़ एक्शन वरितो वियो। समूरनि सूबनि पंहिंजे हिसे मां बजट जो कुझु हिसो वफ़ाक खे ॾिनो। सिंध असेंबली में बजट ते बहस दौरान सूबाई वज़ीर ऐं हुकूमती MPS जी MKM में वफ़ाकी हुकूमत ते तनक़ीद। सूबाई वज़ीर सैयद दासिर शाह चयो त समूरी दुनिया में मोटर वेज पोर्ट सिटी खां शुरू थींदा आहिनि। हैदराबाद कराची ऐं सखर हैदराबाद मोटर वे रुगो सिंध न पर समूरे मुल्क जी ज़रूरत आहे। MQM जे तलह अहमद चयो त सूबनि जी ॻाल्हि त मुल्की आइन में शामिल आहे। नए सूबे जी ॻाल्हि खे गदारी चवणु मुनासिब न आहे। MPA जमीर सूमरो MQM ते जवाबी वार कंदे चयो त सिंध बम्बई बेकरीअ जो केक न आहे जो तव्हांखे कराची कटे धार करे ॾियूं। असां बोरीबंद लाश ॾिठा आहिनि। औरंगी टाउन में बीबी कारकुननि खे वैन में साड़ियो वियो। लतीफ़ाबाद में बीबी कारकुननि खे क़त्लु कयो वियो। अव्हां जा हक़ वफ़ाक खाई वियो ऐं अव्हां उन्हनि सां गॾु वेठा आहियो। मुंहिंजो घर साड़ींदव त पाण बि बची न सघंदव।

मुल्क में कोकेन कराची न पर पेशावर ऐं लाहौर जे हवाई अॾनि तां अचे थी। पिंकी हुजे या ॿियो को बासर, सभिनी खे पकड़ियो वेंदो। सूबाई घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजा जो सिंधी सभिनी में ख़िताब। ज़ियाउल हसन लंजा चयो आहे त निजात महिरान ऑपरेशन में 48 धाड़ियल मारिजी विया, 549 हथियार फिटा कया। परे वेठल चयनि भताखोरनि जा रेड वारंट्स बि जारी थी चुका आहिनि। कराची में स्ट्रीट क्राइम में 40% घटताई थी। दहशतगर्दी जा वाकिया 80% घटिया आहिनि। हलंदड़ साल कराची में दहशतगर्दी जो हिकु बि वाकियो पेश न आयो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GAFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: आई। हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार लाण लाए
4: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हे नंबर ते राबतो कंदा
3: 0331252578।
4: जी हां 2315525786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: it's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
3: मोर को दिल्ली राणा मोर को दिल्ली
2: आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हाँ बुड़ी 231525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
5: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
3: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार लाण लाए
4: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
3: 0331252578
4: जी हाँ बुड़ी 331 5 5 786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।